अच्छा आप अंश, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। बचपन से एक बात सुनती आ रही हूँ कि समय बड़ा होता है। सताक्षी सुनो, समय बड़ा होता है, समय का ध्यान रखा करो, समय से ये किया करो, समय से वो किया करो, समय को फॉलो किया करो। लेकिन एक दिन मुझे समय ने बता दिया, श्री सताक्षी मैं तो बड़ा होता हूँ लेकिन लोग बदलते हैं। और जो लोग तुमसे कहते हैं ना कि समय बड़ा है और वो बदल जाता है, जरा देखो तो, समय बदले ना बदले, समय बदलने के साथ लोग जरूर बदल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात जब समय ने मुझे समझाई तो मुझे समझ में आया कि भाई है ना, सब पर भरोसा करना, ये गर्व से प्राउडली ये कहना कि ये तो मेरा अपना है तो मुझे कभी छोड़ेगा ही नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। समय बदलने के साथ लोग कैसे बदलते हैं ना, मतलब गधे के सर से सींग गायब होने का जो मुहावरा है वो फिट बैठता है यार इस पर। चलिए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए और आप मुझे बताइएगा जरूर कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका टाइम बदला हो और सडनली लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड आपके लिए, लोगों की रिस्पेक्ट, सब कुछ चेंज हो गया हो, बताइएगा। एक और ट्रैक सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

बहुत ज्यादा पछतावा रहता है जिनके मन में, उनसे बात करती हूँ या उनसे भी जो बहुत ज्यादा फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। देखिए पछतावा या गिल्ट किसी भी बात को लेकर अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है बात हो चुकी है, वो आपने किसी को हर्ट किया हो या कुछ भी जो भी आपने किया जिसकी वजह से वो गिल्ट है वो आपका पास्ट बन चुका है ना। अब देखिए गिल्ट रखने से क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में जाके वो चीजें करेक्ट कर दें? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और वो लोग जो ज्यादा सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप फ्यूचर में वही करें जो आज आप सोच रहे हैं, जिस बात को लेकर आप परेशान हैं? नहीं, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता कि वो फ्यूचर देखने के लिए आप होंगे कि नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में ना पास्ट है ना फ्यूचर है, आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। ये मोमेंट जो इस वक्त गुजर रहा है बेसिकली ये आपका है, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, यही एक मोमेंट है जो आपका है। बाकी सब कुछ फ्यूचर है या फिर पास्ट है, जो गाने प्ले हो चुके पास्ट थे है ना। तो इस पल को सिर्फ जीना है, इसी पल को इंजॉय करते चलना है और इस हर एक पल के साथ गुजरने वाले अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए। सुनते रहिए इट हैपेंस, आपके साथ सताक्षी है रेडियो प्रस्वानी पर।

शौक नहीं रहा अब खुद को साबित करूं, शौक नहीं रहा अब खुद को साबित करूं। आप कहेंगे तुम गलत हो, मैं कहूंगी कि आप सही हैं। आप कहेंगे कि तुम गलत हो और मैं कहूंगी कि आप सही हैं। यू नो, ये स्टेज जब लाइफ की आती है ना, और जिनकी भी जिंदगी में आती है, यकीन मानिए आती जरूर है, और जिनकी जिंदगी में नहीं आती वो ये भी यकीन मानिए कि वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। एक वक्त लाइफ में ऐसा आता है जब आपको लगता है कि यार क्यों एक्सप्लेन करना है, आज तक एक्सप्लेन कौन से झंडे गाड़ दिए हमने, लोगों को जो समझना था वही समझ रहे हैं और आगे भी लोग वही समझेंगे जो उन्हें समझना है, तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं ना। समझे वो जो समझना है, हमें गलत कह रहे हैं ठीक है उनके लिए, हम गलत ही सही, खुद को सही साबित करके भी क्या कर लेंगे जो हमें गलत समझ रहे हैं। और आप कहते हैं कि तुम गलत हो, अगर किसी ने कहा ठीक है भाई हम गलत हैं, हम जैसे हैं अब तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। आइए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो प्लस वाणी, आप सुन रहे हैं 58.5।

चलिए थोड़ी सी बात हो जाए वर्ड्स पर. यू नो वर्ड्स हमारी जिंदगी में बहुत मैटर करते हैं, माने ना माने, लेकिन एक गजब की अहमियत होती है इन वर्ड्स की हम सबकी जिंदगी में. वर्ड्स आपके अगर बढ़िया हैं, कुछ लोगों में बड़ी पावर होती है कि वो कितना भी परेशान इंसान हो उसे खुश कर देते हैं अपने वर्ड्स से. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं

सोच समझ के कहा करिए। आपके कहे गए शब्द किसी को हील भी कर सकते हैं और किसी की जिंदगी को हेल्प भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। आपके साथ सदाक्षी है रेडियो पुष्पानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life.

0: Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
1: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

कुछ लोग कहते हैं, आपने बचपन से सुना होगा, मैंने भी सुना है यार, कि अगर किसी के साथ गलत करोगे तो दुख मिलता है। जब लाइफ को एक्सपीरियंस किया मैंने तो ये समझा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत करें तभी आपको दुख मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होना भी ना आपके लिए खतरनाक हो जाता है, आपको उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है, आपकी जिंदगी में आपको दुख फेस करना पड़ता है। इसीलिए उतने अच्छे बनिए जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनेंगे तो फिर लोग आपको तकलीफ देने से, आपको हर्ट करने से, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से, कुछ भी कह देने से पीछे नहीं हटेंगे। और वो जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, वो जो आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए हद से ज्यादा अच्छे मत बनिए, ठीक है, अच्छे रहिए, अवेलेबल रहिए, लेकिन उतना जितना आपकी बाउंड्रीज से बियॉन्ड जाकर ना हो। सुधाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

भाई ये आज इट हैपेंस पर मेरा आपके साथ वो साथ था जिसे अब वक्त हो गया है वाइंड अप करने का। दिन चढ़ रहा है, हमें भी आगे जाना है और आपको सबसे इम्पोर्टेंटली अपना काम शुरू करना है भाई, है ना, वरना दिन तो सताक्षी की बातों में गुजर जाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका दिन मेरे साथ यूं ही बातें करते हुए गुजर जाए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में जो गोल सेट किए हैं उनकी ओर बस बढ़ते जाएं। तो चलिए अब हम इजाजत लेते हैं, विदा लेते हैं सफर से, और आपके साथ हमारी जो मुलाकात है वो अब होगी कल एक बार फिर से इसी सफर में। इट हैपेंस में मिलूंगी आपसे। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर

जी, मैं हां संदेश शौलिक शर्मा तुसी सुन रहे हो रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जिबला हो चुके हैं। हुन तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत। चंडीगढ़ विच संयुक्त किसान मोर्चे वालों अपनी वख-वख मंगां नूं लै के 1 सितंबर तों लाए गए धरने नूं खत्म करन दा ऐलान कर दिता गया। दरअसल मोर्चे ते पंजाब सरकार विचाले वख-वख मंगां नूं लै के पूर्ण सहमति बन गई है। किसान जथेबंदियां ते आगुआं ने पंजाब सरकार वालों भेजे गए सहमति पत्र नूं अपनी प्रवानगी दे दित्ती है। खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने किसान मोर्चे विच पहुंच के सरकार वालों किसानां दीआं मंगां मन्ने जाण दा ऐलान कीता। उन्हां ने यह भी ऐलान कीता है कि 1 महीने दे अंदर अंदर पंजाब विधानसभा दा सैशन बुलाया जाएगा, जिस विच किसानां दीआं मंगां ते विचार वटांदरा कीता जाएगा। उधर नेपाल विच भयानक हड़ा कारण सोमवार नूं प्रभावित इलाकियां तों होर लाशां बरामद होण तों बाद मरण वालियां दी गिणती 1355 तों पार हो गई। अधिकारियों ने संबंधी जानकारी दित्ती है। राष्ट्रीय आफत जोखम घटाउण ते प्रबंधन अथारिटी ने कहा है कि बचाव टीमां अजे भी 4,996 लोगों की भाल कर रही हैं, जिन्हां विचों घट्टो घट 599 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हुण तक 13,396 लोगों नूं बचाया गया है। NDRRMA दे अनुसार चितवान जिले तो 363 लाशां, नवलपरासी पछम तो 221, नवलपरासी पूरब तो 222 ते नुवाकोट तो 197 लाशां बरामद कीतियां गईयां ने। इसे तरह रसूवा तो 169, गोरखा तो 75, ताड़िंग तो 70 ते तानाहुन तो 38 लाशां बरामद कीतियां गईयां ने। सुरक्षा बलां दी सांझी कमांड सरगर्मी नाल खोज ते बचा कार्य चला रही है। हड़ प्रभावित जिलों विच स्थित पण बिजली प्रोजेक्टा ते एक विशाल बचाव कार्य चल रहा है। इन्हां प्रोजेक्टा दीआं सुरंगा विच सैकड़े लोगों के फसे होण दा खदशा है। उधर यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान नूं साफ चेतावनी दे दित्ती है कि ओह EU वल्लों मिलण वालियां रिवायती व्यापक सहूलतां नूं पक्का ना समझे ते हल्के विच ना लवे। EU मुताबिक पाकिस्तान विच मनुखी अधिकारां, बोलण दी आजादी, घट गिणतियां दे हक्कां ते अदालती आजादी दी स्थिति बेहद खराब है। मौजूदा GSP+ समझौता 2026 दे अंत तक खत्म हो रहा है ते नवें समझौते लई पाकिस्तान नूं होर सख्त अंतरराष्ट्रीय शर्तां पूरियां करनियां पैणगियां ते अधिकारां दी उलंघना सने होर कई मुद्दयां ते सुधार करना पवेगा। जिक्रयोग है कि पाकिस्तान दे कुल निर्यात दा लगभग 28% हिस्सा EU नूं जांदा है, जिस विच ज्यादातर टैक्सटाइल उद्योग शामिल हन। जेकर EU वल्लों पाकिस्तान नूं मिलण वाली ए सहूलत खत्म हुंदी है तां पाकिस्तान दी अर्थव्यवस्था नूं वड्डा नुकसान पहुंचेगा। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ते तिखा तंज कसदिया सोशल मीडिया ते एक हॉकी कार्टून सांझा किया। इस कार्टून विच ट्रंप ने प्रधानमंत्री कार्नी नूं गवर्नर कह के बुलाया, जो कैनेडा नूं अमरीका दा 51वां सूबा बनाउण ते उसके पुराने सुझाव वल इशारा करता है। ट्रू सोशल ते सांझी कीती गई इस तस्वीर विच दोवें विश्व आगू हॉकी खेडते दिखाई दे रहे ने। कार्टून विच ट्रंप ने USA हॉकी की जर्सी पाई हुई है ते ओह बर्फ डिगे हुए मार्क कर्नी, जिन्ना ने हॉकी कैनेडा की जर्सी पाई हुई है, दे उपर खड़े होके कह रहे हैं उठो गवर्नर। साफ ए सिर्फ एक मीम नहीं, सगो दोवे देशों विचाले चल रहे आर्थिक ते राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन गया है। जिक्र योग है कि पहली बार नहीं जदों ट्रंप ने किसी कैनेडियन प्रधानमंत्री नूं गवर्नर किया होवे। इस तों पहला जनवरी 2025 विच अहुदा संभालण तों बाद ट्रंप ने कार्नी दे पूर्व साबका प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं वी गवर्नर ट्रूडो कह के संबोधित कीता सी। हुण तक दी अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी है bisoni@bisoni.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो बिसोनी 101 FM। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तकली दे इजाजत, सत श्री अकाल।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो सैफ अली खान ते शान लगभग दो दहाके बाद ना फिल्म हैवान दे नाल एक बार फिर तो इकट्ठे नजर आए है। जुगलबंदी बहुत शानदार है, एक शानदार एक्टर ते एक शानदार सिंगर है। फिल्म दा पहला गीत है जिहड़ा मेरे हीरो है वो हाल ही विच रिलीज होया ते इसने फैंस नूं एक बार फिर तो इस जोड़ी दी शानदार संगीतात्मक जुगलबंदी दा तोहफा दित्ता है। गाने तो पहला ही खूब गाने नूं प्यार मिल रहा हैगा कि फिल्म रिलीज होने तो पहला ही, तो मैं सोचा कि क्यों ना और मौका यहो जहा है गाया ता नजर पाईए जब सैफ ते शान ने म्यूजिकल चार्टर्स विच अपना जलवा बिखेरिया सी कट्ठे कट्ठे आए सी। करिए ना उन्होंने गल तो कर दें पर पहला सुनो एक गीत।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.6 चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस तो बाद जेड़ा आंदा हैगा है गीत बारे नहीं, पहला फिल्म बारे दस दिया। तो फिल्म है जी हम तुम बहुत सोहनी फिल्म हैगी है। हुण तुसी जे सर्च करोगे गूगल ते तो तुहानू पूरा डाटा मिल जाना हैगा है हम तुम दा। मैं नहीं दस दिया, तुसी एक बार सर्च करो तो फिर मैनू मैसेज करो। तो इसका गाना है लड़की क्यों, सैफ अली खान दे सहज ते बेफिक्र अंदाज वाले करण नूं इस गाने विच शान दी मधुर ते दिलकश आवाज दा बेहतरीन साथ मिलिया सी। रानी मुखर्जी दे नाल सैफ दी चुलबुली केमिस्ट्री ते गाने दे गलबात वर्गे बोल ने लड़की क्यों नूं सैफ अते शान दी सब तो यादगार कोलैबोरेशन दे विचों इक बना दिता सी।

हां जी देखो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर छे संदेश चौलक दिनाल सी बने हुए। अगली फिल्म जेड़ी सैफ अली खान दी ते ओदा गाना जिसनु श्यान ने गाया हैगा ओ बहुत खास है ते ओ फिल्म है जी सलाम नमस्ते। हां जी सलाम नमस्ते ते फिल्म सा गाना सलाम नमस्ते नी गाना हैगा माय दिल गोज आ गया ना यार ये बहुत ज्यादा हिट गाना सी ते एहे इना दोनों दी कोलैबोरेशन सी। शानदी सॉफ्ट ते यंग आवाज ने इस गीत विच सैफ अली खान दे कूल रोमांटिक ते बेफिक्र अंदाज नू बखूबी कॉम्प्लीमेंट किया। ब्रिजी जिंटा दे नाल सैफ दी शानदार कैमिस्ट्री ते उन्हां दी सहज स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गाने नू एक खास यंग अट्रैक्शन दिता सीगा जो अज भी हिट है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 ते जी आज संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। गल्लां दा सिलसिला साडा जारी हैगा, नालों नाल असी गीत भी सुन रहे हैगे आ, थोड़ी पसंद है कुछ मेरी पसंद है। हुण खैर फिलहाल असी सैफ अली खान ते शान दी जुगलबंदी दी गल कर रहे हैगे आ। तां अगली जिहड़ी फिल्म इन्हां दी इकट्ठियां दी आउंदी हैगी आ, फिल्म नहीं गीत, पूरे गाने तां नहीं एक एक गीत, ओ फिल्म दे विच्चों आउंदा है, ओ है जी फिल्म तारा रारा राम पम। हां जी, इस फिल्म दे विच्चों ते गाना है हे शोना। हे शोना विच ना सैफ अली खान ने अपने ट्रेडमार्क रोमांटिक अंदाज दा जादू बिखेरिया। उधर शान दी गर्म जोशी भरी आवाज ने उन्हां दी परफॉर्मेंस नूं होर निखारिया हैगा। विशाल शेखर दे कंपोजिशन वाला एक गाना सैफ दे किरदार दे रोमांस नूं लैके परिवारिक जीवन तक दे सफर नूं खूबसूरती नाल दर्शाउंदा है। ते तारा रम पम दे सब तो खास गाने विच शामिल करदा है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

हां जी जी आया नु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरे डी स्टेशन रेडियो पर सोनी वन सरो वाले हम ते चार चे संदेश और एक दिन आज से बने हुए हूं। अगला जेरा गाना है गाए वो है जी मेरे हीरो है वो जिसकी स्टार्टिंग दे विच गाल की थी ते फिल्म है जी हैवान। जी हाँ, हे शोना दे लगभग 19 साल बाद सैफ अली खान ते शान एक बार फिर हैवान दे गाने मेरे हीरो है वो दे नाल इकट्ठे आए ने। ਇਹ ਮਧੁਰ ਗਾਣਾ ਸੈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। फ्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, फ्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हां जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिन आल से बने हो। देखो इन्निया सारिया चीजा बारे मैं थोड़ा दसता हैगा, इन्ने सारे गीतां बारे मैं थोड़ा दस दिता हैगा है जेडे सैफ अते शान दे इकट्ठे आए ते बहुत ज्यादा पसंद किए गए दर्शकों वालों। जिवें सब तो पहला दिल चाहता है तो वो लड़की है कहां, फिर हम तुम तो लड़की क्यों, फिर सलाम नमस्ते तो माए दिल गोज, फिर हे शोना फिल्म हैगी है तारारम पम, ते फिर उस तो बाद आंदा है जी मेरे हीरो है वो हैबान फिल्म। तो हुण तुसी ये दसो कि इस दे विचों केड़ा गीत थानू बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुसी चाहुंदे है क्यों कि होर इन्हां दी दोनों की जुगलबंदी इकट्ठी देखण मिले, तो कॉमेंट करो मैसेज करो मेल करो जो भी करो पर जुड़ो साडे नाल।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों अलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
10: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is Grand Kirtan Night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा या
2: या
3: ओके सॉफ्ट
2: या सॉफ्ट अप लाउड या
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
5: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
4: ऐसा क्या खास है वहाँ
5: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
4: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और नेटवर्क की गड़बड़ और तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा लग रहा था कि आज हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन लेकिन लेकिन हमने उसे ओवरकम कर लिया है। सो यू नो व्हाट, लाइफ जो है वो हमेशा हमारी तरफ कुछ ना कुछ जो है वो थ्रो करती रहेगी। हम सब की तरफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है इधर उधर थ्रो करती रहती है, एंड दैट्स लाइफ। बट उससे हमें कैसे निपटना है और उसको पीछे छोड़ के कैसे आगे की ओर बढ़ना है, दैट्स What is important। और ये यही हुआ है। सो मुझे लगता है आज ये ताज़ा ताज़ा हमारे साथ हुआ है। सो ऑफकोर्स इसके बारे में बात करना बनता है। सो जब भी आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे यार मतलब why me, जी हाँ आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। बट देन यू नो वॉट, दिस इज लाइफ एंड दिस इज हैपनिंग टू एवरी वन, यू जस्ट डोंट नो इट। जी हाँ, बट द थिंग इज कि इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ में हैप्पीनेस की भी बिट्स आती हैं। सो ऑफकोर्स ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद जो है वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। सो उसका जो है इंतजार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू होगा अच्छे रिचुअल के साथ, हेल्दी रिचुअल के साथ। एंड व्हेन आई से हेल्दी रिचुअल, आई मीन डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग के लिए। नॉट जस्ट फॉर आर प्रोग्राम बट फॉर एवरीवन। जब भी आपको शुरू कर रहे हो, आप चाहते हो कि कोई भी केओस उसमें आपके डिसीजंस को अफेक्ट ना करे, आपके दिमाग को अफेक्ट ना करे, आप पूरी प्रोडक्टिविटी से काम कर सको, आप अच्छे डिसीजंस ले सको, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज लेना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे पहले तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ। जी हाँ, गाने का नाम है मन जोगिया जोगिया। जी हाँ, यही हम आपको सुनाने वाले हैं और फिर हम करने वाले हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, आरएस के साथ प्रोग्राम की हो गई है शुरुआत। तो क्या कह रहा है बादल, बदरा, मौसम, टेम्परेचर, आइए जरा उसकी तरफ रुख करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 23.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको ऑन द अदर हैंड हो रहा है 20.9 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, तो ये पिछले कुछ दिनों में जो है वो टेम्परेचर में जो है वो गिरावट आपने देख ली। पिछले कुछ दिनों से जो गर्माहट आप देख रहे थे, मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो सितंबर में देखी गई है ब्रिस्बेन में। मतलब 30 से ऊपर पहुंच गया था टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 32, 33, 34 तक। सो यू कैन इमेजिन। और इसके बारे में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा भी था कि कैसे इतनी गर्मी तो ब्रिस्बेन में सितंबर में कभी भी नहीं पड़ी। पर चलिए, अब टेम्परेचर जो है वो गिर गया है, तो राहत की सांस लीजिए और थोड़ी ठंडी ठंडी सांस भी लीजिए। इसी के साथ ये तो दिन की बात हुई, रात की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने के चांसेस हैं। वहीं अगर बात की जाए बारिश की तो 50% चांसेस है बारिश के, जो कि मुझे दिख रहे हैं 4 बजे तक होती हुई। और अगेन उसका मतलब यही है कि 6% चांसेस हैं, और 6% का मतलब है कि पूरी सिटी में सिर्फ 6% एरिया ही है जहां पर बारिश होगी। मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में ही, बाकी सब सूखा सूखा रहने वाला है। इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार यानी कि फेयर। और ये थी आज की बात। अब चलते हैं कल यानी वेडनेसडे एंड थर्सडे की तरफ। वेडनेसडे की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और साथ में 50% चांसेस भी हैं बारिश के। ऑल्दो मुझे मौसम जो है वो खिला खिला और खुला खुला नजर आ रहा है, और उसका मतलब यही है कि सूरज जो है वो मुझे चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। बट थर्सडे को 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख पाएंगे, मतलब गिरावट आएगी वेडनेसडे के मुकाबले थर्सडे को, और 40% चांसेस बारिश के आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब मुझे नजर आ रहे 40% चांसेस बारिश जो है वो आपको मिलने वाली है। जी हाँ, थर्सडे की मैं बात कर रही हूँ, और बीच में बादल भी मुझे नजर आ रहे हैं, बट वेडनेसडे को मुझे बादल इतने नजर नहीं आ रहे हैं। जो 50% चांसेस है बारिश के वो भी कहीं कहीं पर होगी, यू नो व्हाट आई मीन। जी हाँ, यहाँ पर ये है मौसम का हाल जो कि आपके हिसाब से चल रहा है या चाल, मुझे नहीं पता, बट या आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और गाना आपको हमारी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द

0: एलडी खोजो या 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्चे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर चलने से मेरा मतलब यही है कि मौसम की जानकारी हो गई, हमने आपका स्वागत भी कर दिया, अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए, मतलब कैसे आप अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम में रिकमेंड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो और इनफैक्ट किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो। जी हाँ, सो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। आपको बस अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से आ जाइए, फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं थोड़ी सी रोमांटिक गिरी हो जाए यहाँ पर। जी हाँ, आप बोलोगे क्या मतलब है इसका, वेल आप गाना सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।

जी दोस्तों, इसी के लिए कहते हैं कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम अजूबा नहीं होता। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वेल, आपको तो पता ही है, इस दुनिया में बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें होती आई हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह की सर्विसेज भी होती आई हैं। मतलब लोगों का आइडिया अगर खतरनाक है तो उनको बेहतरीन कमाने का मौका जो है वो मिलता रहेगा। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोफेशन, वो इतना ज्यादा यूनिक है कि आपको लगेगा वाओ इज दैट अ प्रोफेशन। Yeah, it is a profession. So, एक बंदा है चाइना में, जी हाँ, जो कि literally $16,000 कमाता है हर महीने just by scratching people's back. आप लोग बोलोगे क्या निवेश, what are you talking about? Well, जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्या रियली, मतलब ये मजाक नहीं है ना। जी हाँ, सो ये लिटरली बंदा कमाता है ऑलमोस्ट $16,000 एवरी मंथ। जी हाँ, और इस बंदे के दो स्टोर्स हैं और यहाँ पर इस बंदे की जो उम्र है वो है 32 साल। जी हाँ, शेंजन में इस बंदे के दो स्टोर्स हैं और 32 साल की उम्र में ये एंटरप्रेन्योर बन गया है। इसका नाम है जेंग शाओचाओ और इसने एवरीडे की जो प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो है जो पीठ है, हमारी जो बैक है, उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत खुजली होती रहती है लेकिन हमारे हाथ पहुंचते नहीं है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ टूल्स यूज करते हैं अपनी बैक को खुजलाने के लिए, अपनी पीठ को खुजलाने के लिए, या हम किसी की हेल्प मांगते हैं, अरे यार ये जरा मेरी पीठ खुजलाना या ऐसा करना जरा, या हम ऐसा करते हैं, राइट? ऑफ कोर्स हम अपने नॉर्मली घर वालों को ये बोलते हैं, लेकिन इस बंदे ने कहा कि आपको अपने घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आपको टूल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को मतलब एक्रोबेटिक्स करवाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस यहां आने की जरूरत है। आई एम गोना स्क्रैच योर बैक एंड यू गोना बी ओके, यू गोना फील गुड, दैट्स इट। अरे भाई, ये काम के बारे में अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी, दे विल बी लाइक क्या मजाक है, इस दुनिया में कुछ भी चल रहा है, कलयुग आ गया, या दैट्स व्हाट दे आर गोना से। मतलब पीठ खुजलाने का काम एक बिजनेस बन गया है और बंदे का एक स्टोर नहीं है, दो स्टोर्स है। आई मीन काम तो काम है, पैसा आ रहा है ना, बस वो तो है। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਆਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
3: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. Commercial matter हो जैसे lease का मामला, business हो या फिर घरों की buying selling का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही अजीबो गरीब चीज के बारे में और रिचुअल के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि अगेन आपको लगेगा कि वाओ क्या यूनिक रिचुअल है, क्या यूनिक चीज है, राइट? सो ये है रिचुअल फिनलैंड का। जी हाँ, जहां पर ग्रोसरी स्टोर्स में एक पिंक बास्केट रखी जाती है। सो जो भी सिंगल लोग होते हैं जो कि डेट करना चाहते हैं या फिर दे आर ओपन फॉर द कॉन्वर्सेशन और वो दिखाना चाहते हैं कि वो सिंगल है और दूसरे लोग आकर उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, वो उस ग्रोसरी मार्ट से पिंक बास्केट उठाते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग बोलोगे कि व्हाट, जी हाँ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, अजीबो गरीब चीजें इतनी ज्यादा होती है इस दुनिया में कि क्या ही कहा जाए। सो फिनलैंड का ये रिचुअल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दे डोंट इवन नीड अ मैच मेकिंग कंपनी, दे डोंट इवन नीड अ डेटिंग ऐप, मतलब उनको जरूरत ही नहीं है। ऑल दे नीड टू डू इज गो टू अ ग्रोसरी शॉपिंग एंड मतलब ग्रोसरी स्टोर में आपको जाना है, आपको पिंक बास्केट उठानी है और आपको अपना सामान जो है उसमें डालते रहना है और लोग उस पिंक बास्केट को आपके हाथ में देखकर बता सकते हैं, जान सकते हैं कि आप सिंगल हो एंड यू आर ओपन फॉर अ कॉन्वर्सेशन एंड दे कैन लिटरली अप्रोच यू। और मतलब लिटरली वो आप सिंगल से मिंगल होने के चांसेस आपके ग्रोसरी स्टोर में बढ़ जाते हैं लिटरली। मतलब फिनलैंड वालों ने सही कहा है कि देखो हम फालतू की कंपनीज को पैसा नहीं देने वाले हैं, हमारे ग्रोसरी स्टोर्स में पिंक बास्केट उठा के ही तुम अपने को सिंगल से मिंगल बना सकते हो। यू डोंट हैव टू डू मच, यू डोंट हैव टू पे एनी ऐप और कंपनी यू नो टू डू दिस बिड फॉर यू। या I was like, yeah, man, this is interesting. This is interesting. मतलब grocery store जाओ और pink basket उठाओ और सबको बता दो कि आप single हो और आप ready to mingle भी हो। जी हाँ, लेकिन of course जो लोग नए नए जाएंगे और वो pink basket अगर गलती से उठा लेते हैं और वहां पर shopping करना शुरू कर देते हैं तो लोग उन्हें भी आके approach कर सकते हैं और उनको पता भी नहीं होगा कि why people are approaching them. You know, right? जी हाँ, so of course जो नए लोग जाते हैं उनको ये जो ritual है वो बहुत ही दिलचस्प लगता है। बट मुझे ऐसा लगा कि बात तो सही है, मतलब आई थिंक इट्स अ गुड रिचुअल। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बास्केट उठाओगे तो आपको लोग अप्रोच करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पिंक बास्केट पर लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं। सो आई गेस दैट्स गुड राइट, है ना। या इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने कुछ पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि भाई बात तो है, हिपोक्रेसी किस लेवल की है। जी हाँ, मतलब ऐसी मैंने ऐसा कुछ देख लिया जो कि इतना सेंस बना रहा था और मुझे लगा कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ भी ये शेयर करना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ था कि दे से यू मस्ट फाइट फॉर व्हाट इज योर्स एंड देन दे से इफ इट इज योर्स then you don't have to fight for it. I'm confused. Are we fighting or not? And I was like, yeah, that's true. मतलब क्या double standards है? कभी बोलते हैं कि you know what, you must fight for what is yours. और फिर कभी बोल देते हैं कि you know what, if it is yours, then you don't have to fight for it. आई मीन आप डिसाइड कर लो कि हमको फाइट करनी है कि नहीं करनी है। अगर ये हमारा है तो हमें इसके लिए फाइट करनी है कि नहीं करनी है, आप पहले अपना माइंड बना लीजिए। लिटरली मतलब लोगों ने ना कंफ्यूज करके रखा हुआ है। मुझे सच में अच्छा लगता है कि आजकल के जेंजी ना कंफ्यूजन को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाते हैं। दे आर लाइक कि ओके, आप मुझे बताओ कि हमें करना है या नहीं करना है, मतलब आर वी फाइटिंग और नॉट, मतलब हमें फाइट करना है जो चीज हमारे है उसके लिए, या फिर जो हमारी है वो हमें ऐसे ही मिल जाएगी, उसके लिए हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। आई मीन अच्छे से बताओ, करनी है फाइट या नहीं करनी है? आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू। आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको, करनी चाहिए फाइट या नहीं करनी चाहिए, तकदीर पर छोड़ देना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And you are listening to Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm
2: Manmeet
3: from the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: And you are listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
14: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
15: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
16: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
15: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। जी हाँ, यू आर नॉट रिच अनलेस यू कैन अफोर्ड अ लीजन। जी हाँ, आई एम नॉट सेइंग दैट एलन मस्क द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ हैज सेड इट। जी हाँ, आपने ध्यान से सुना है या नहीं सुना है, मैं आपको फिर से बता दूं। यहां पर एलन मस्क का कहना है कि वो सबसे ज्यादा रिच नहीं है इस दुनिया में, Putin is significantly richer than him. Why? Because Elon Musk cannot invade a country, but Putin can. जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि ये quote है कि you are not the richest unless you can afford the legion. जी हाँ, that's what he said. अब लोग जो हैं इस statement के बाद ये कह रहे हैं कि so मतलब अब इतना सारा कुछ करने के बाद ये इंसान अब countries भी invade करना चाहता है. मतलब उसको करने को नहीं मिल रही है, वो बात अलग है, लेकिन ये करना जरूर चाहता है. जी हाँ, सो ये एक वीडियो है जिस वीडियो में एक बंदे को इंटरव्यू देते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जब सामने जो बंदे बैठे हुए था वो पेंटागन की अथॉरिटी में कोई बैठा हुआ था, और वहां पर वो पूछता है कि बीइंग द रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ, वो आगे कुछ बोलते इससे पहले एलन मस्क उनको रोकते हैं, यू नो व्हाट, आई डोंट थिंक आई एम द रिचेस्ट मैन, आई थिंक Putin is significantly richer than me. Yeah, that's what Elon Musk said. और of course, उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, उन्होंने कहा कि you know what, I cannot invade a country, but Putin can. जी हाँ, and if you are not exactly rich, if you can't afford a legion, that's what Elon Musk said. Of course, बहुत सारी जो है वो बातें और कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू कर दी गई है एलन मस्क के द्वारा ये बात कहकर कि वो अपने आप को रिच फील नहीं करते हैं क्योंकि उनको कंट्रीज इन्वेड करने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो कंट्रीज इन्वेड कर सकता है, जो लीजन अफोर्ड कर सकता है, वही रिचर है और रिचेस्ट है. सो पुतिन इज रिचर देन एलन मस्क, ये एलन मस्क ने खुद कहा है. जी हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन्स कितने डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, राइट? मतलब मैं नहीं कह रही कि पुतिन इज अ गुड पर्सन, पुतिन

का रीजन ये था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनने जा रहा था, और अगर वो बन जाता तो अमेरिका उसके लिटरली नेबरहुड में, पड़ोस में अपनी आर्मी लगा देता, और वो नहीं चाहता था, एंड दैट वाज द रीजन। एंड उससे पहले उन्होंने काफी बार कहा भी था कि यूक्रेन को नहीं बनना चाहिए नाटो का सदस्य, दिस दैट ऑल दैट जस्ट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा करे और यूक्रेन को उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स यूक्रेन जो करना चाहता है उसको करने का मौका वो मिलना चाहिए, उसको जिस चीज में फायदा दिख रहा है उसको वो करने का मौका मिलना चाहिए। बट रूस ने जब हमला किया एटलीस्ट उसने एक बहाना दिया, लेकिन अमेरिका ने क्या दिया? वेनेजुएला, ईरान, दिस दैट, मतलब कहां पे इसने बहाना दिया? कुछ भी कर देते हैं और कहते हैं हम पीस के लिए कर रहे हैं। कौन सा पीस? काहे का पीस? पीस ऑफ केक? आई डोंट नो। बट या एलन मस्क की स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन करने लायक तो है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि वॉर फ्रंट पे बहुत कुछ चल रहा है। वेल, ईरान अमेरिका विवाद जो है वो दूसरी कंट्रीज, अरब कंट्रीज को भी अपनी ओर घसीटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इसका खामियाजा तो पहले से ही भुगत रही है बहुत सारी अरब कंट्रीज, लेकिन यहां पर सऊदी की अगुवाई वाले गठबंधन का दावा है कि सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले में 73 लोग घायल हुए। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दावा किया है कि ईरान समर्थित हूती लड़ाकों की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों में कम 73 लोग घायल हुए हैं। बीबीसी की फारसी सेवा के मुताबिक गठबंधन ने कहा है कि वो इन हमलों का निर्णायक जवाब देगा। यमन के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र और देश के उत्तरी भाग के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों ने जुलाई में सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद उसने सऊदी अरब पर अपने हमले शुरू कर दिए थे। उसने रेड सी में सऊदी के जहाजों को भी निशाना बनाया था। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के एक प्रवक्ता ने हाल ही में तेज हुई लड़ाई के बारे में बताया कि यह खतरनाक है। उनका कहना है कि हूतियों ने सऊदी अरब में नागरिक और आर्थिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। इन नए हमलों में सऊदी तेल कंपनी अरामको के जीजान स्थित संयंत्रों को निशाना बनाया गया है। हालांकि अरामको ने इस मामले में कोई टिप्पणी की नहीं है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और दर्दनाक हादसा हुआ जो कि दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। जी हाँ, सत्यनिकेतन हादसा। बिल्डिंग के मालिक को पत्नी और बेटे समेत गिरफ्तार किया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जी हाँ, जामा मस्जिद के पास एक बिल्डिंग गिर गई जिससे बहुत सारे लोग दब गए, कुछ घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली के सत्यनिकेतन में गिरी 5 मंजिला इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता और उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें सोमवार को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। जी हाँ, और इसके मुताबिक हीराराम और उनकी पत्नी उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि बेटे महेश गुप्ता को 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। समाचार एजेंसी AANIA ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया कि बिल्डिंग की बिजली का कनेक्शन हरिराम गुप्ता के नाम पर था, वहीं बेटे की जिम्मेदारी बिल्डिंग मैनेजमेंट की थी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हरिराम गुप्ता की पत्नी उर्मिला गुप्ता के नाम थी। सत्यनिकेतन में 6 सितंबर को 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, इसमें PG चलाया जा रहा था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स थे।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111-27035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111-27035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111-27035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब कनाडा को एक और धमकी दी है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई विमान कंपनी बॉम्बार्डियर को चेतावनी दी है कि अगर वह अमेरिका में अपने विमान बेचना चाहती है तो उसे इन्हें अमेरिका में बनाना पड़ेगा। जी हाँ, ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका में अब बॉम्बार्डियर की कोई और बिक्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हमारा बाजार चाहिए तो उन्हें यही उत्पादन करना होगा और अमेरिका को पैसे की तिजोरी समझना बंद करना होगा। ये कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच उठाया गया है। ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब कनाडा की ओर से अमेरिका के करीब $20 अरब के सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने वाले हैं। बीबीसी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री मार्क कॉनी के कार्यालय और बॉम्बार्डियर से प्रतिक्रिया मांगी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप अमेरिका में बॉम्बार्डियर के कारोबार पर रोक लगाने की योजना को किस तरह लागू करेंगे। मॉन्ट्रियल स्थित बॉम्बार्डियर की अमेरिका के कंसास राज्य में पहले से एक फैक्ट्री है जहां स्पेशल मिशन के लिए सैन्य विमान बनाए जाते हैं। कंपनी में अमेरिका के करीब 3500 कर्मचारी काम करते हैं। बॉम्बार्डियर के विमानों के पूरे बड़े में से करीब आधे यानी बेड़े में से करीब आधे यानी 5100 विमान अमेरिका में स्थित उसके ग्राहक कंपनियां ऑपरेट करती हैं। कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक बॉम्बार्डियर के जेट कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में स्थित संयंत्रों में बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप को धमकी यहाँ पर देनी है।

दोस्तों, और मिस्टर ट्रंप ने एक और नई हरकत कर दी है, तो आइए जरा उसके बारे में जानते हैं और थोड़ा हंस लेते हैं, क्योंकि ये जोकर हमें हंसाने के लिए ही इस दुनिया में आया है। जी हाँ, सो मिस्टर ट्रंप ने अब एक नया ट्वीट किया है अपने ट्रुथ सोशल पर। जी हाँ, क्योंकि बाकी जगह तो अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग उन्हें बैन कर देंगे, तो उन्होंने खुद का ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है, खुद ही ट्वीट करते हैं और उसकी स्पॉन्सरशिप और उसकी सब्सक्रिप्शन भी उन्होंने बेचनी शुरू कर दी है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी खबरें वो जल्दी जल्दी उधर ही प्रोवाइड करने वाले, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी भी शुरू कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो यहां पर जो नई हरकत मिस्टर ट्रंप ने की है वो ये है कि उन्होंने अमेरिका का एक नया नक्शा जारी किया है। पिछले कल वो मून पे कब्जा कर रहे थे और मून को यूएस की टेरिटरी बता रहे थे, इस बार आज वो थोड़ा धरती पर उतर आए हैं। मतलब ऑफ कोर्स वो आसमान पे ही रहते हैं, मून को छोड़ दिया है उन्होंने। कहा कि चलो ठीक है, मून पे तो मैं कब्जा कर चुका हूं, अब जरा मैं धरती पर कब्जा करने की सोचता हूं। जी हाँ, तो उन्होंने कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका की टेरिटरी दिखा दिया, मतलब उन्होंने अमेरिका का नया मैप जारी किया है अकॉर्डिंग टू हिम, नॉट फ्रॉम द यूएन और एनी अदर एसोसिएशन, बट फ्रॉम हिम उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें ग्रीनलैंड एंड कनाडा यूएस का दिख रहा है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या है ये इंसान, कितनी भूख है, मतलब एक पैर कब्र में है और दूसरी इनकी हरकतें तो देखो यार जरा, मतलब यू नो व्हाट, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ, तो हम सब एक जैसा ही सोच रहे हैं, एंड आई थिंक इस इंसान के बारे में सब एक जैसा सोचें तो ही अच्छा रहेगा। मुझे पता क्या लग रहा है कि कुछ वक्त में सारी की सारी कंट्रीज मिलकर अमेरिका को धोती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो पता नहीं कितने दिन तक यूनाइटेड रहने वाला है। यू नो व्हाट, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी की गई हैं कि अगले साल जुलाई तक ये अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहने वाला है, और इसका मतलब यही है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को इससे अलग थलग करने वाली है। मतलब आप खुद सोचो ना, अगर कोई खाई में कूद रहा है तो हमको उसके साथ तो नहीं कूदना है, एंड दैट्स व्हाट द स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर गोना डू। अब ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा और कब तक हो जाएगा, जिस हिसाब से ये बंदा कारनामे कर रहा है ये जल्द ही ये करवा के हटेगा, लेकिन बाकी की सारी कंट्रीज कहीं से धोना ना शुरू कर दे। मतलब हर जगह से पंगे ले रहा है ये, तो चलो मून किसी की सत्ता नहीं है, नहीं तो मून से भी लोग इस पे आक्रमण करते। I don't know what goes into his mind. Well, of course, ये बंदा खाता ही मैकडोनल्ड है तो दिमाग में भी मैकडोनल्ड ही होगा, मतलब वो मैकडोनल्ड ही भरा हुआ है इस इंसान के दिमाग में, और ये मैकडोनल्ड वाली हरकतें। अरे अगर तुमको मैकडोनल्ड इतना पसंद है तो तुम उसमें जाके नौकरी करो ना, तुम प्रेसिडेंट क्यों बन गए। अब यहाँ पर ये ऐसी ऐसी रायतें फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक और बहुत ही विचित्र किस्सा सामने आया। अजूबों की कमी नहीं है। सो वो सात अजूबे ही सात अजूबे नहीं है, और भी बहुत सारे अजूबे हैं इस दुनिया में, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो ये बहुत ही फनी किस्सा जो है वो इंडिया का है, जहां पर एक बंदा फॉरेन ट्रैवल कर रहा था या फिर वो अब्रॉड जाने वाला था, तो उसने अपनी स्कॉर्पियो को, बेसिकली अपनी गाड़ी को सिक्योर रखने के लिए कि कोई चोर उसकी चोरी करके ना ले जाए, उसने अपनी गाड़ी को अपने घर की सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पार्क करवा दिया। जी हाँ, आई मीन दैट इज अ वेरी फनी थिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ क्रेन ही डिड इट। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या है ये, मतलब लाइक व्हाट अ अजूबा गरूबा आइडिया, या दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज लाइक वाह क्या बात है। मतलब दिमाग हो तो ऐसा, मतलब बंदा सोच रहा है कि मैं जब तक आऊंगा क्या पता गाड़ी चोरी हो जाए, तो उससे अच्छा है कि मैं उसे ऐसी जगह पे चढ़ा देता हूं जहां से ये चोरी हो ही ना पाए। एंड दैट्स व्हाट ही डिड, ही पार्क्ड इट ऑन हिज रूफटॉप, लिटरली रूफटॉप। पीपल आर लाइक यू नो व्हाट, देसी जुगाड़ सबसे अच्छा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बिहारी सपे बिहारी, बिकॉज ही इज फ्रॉम बिहार। एंड या आई वुड से कि देखो, मतलब अपनी जिंदगी को, अपनी चीजों को सिक्योर रखना है तो थोड़ा तो तूफानी होना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
0: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और बिना देर किए शुरुआत है करते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, और वो है ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो रहा है। घड़ी ने इशारा कर दिया है, वक्त हो गया है, एंड वी आर गना डू दैट एग्जैक्टली। सो व्हाट यू आर गना डू, आपके पास नंबर है, आपके पास गाने फरमाइश करने के लिए है, लेकिन शर्त एक है, यहाँ पर कंडीशन है कि गाना पुराना होना चाहिए, क्योंकि नए गानों का वक्त अब हो गया है। अब ये पूरा का पूरा वक्त जो बचा है हमारे इस प्रोग्राम में, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने गानों के लिए डेडिकेटेड है। तो जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं सबसे पहला इस सेगमेंट में, अलोंग विद ब्यूटीफुल किस्से, ये है ये दिल तुम बिन लगता नहीं। जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सा गाना जो कि गाया गया है किस किस के द्वारा, जी हाँ लता जी और साथ में रफी साहब के द्वारा। वेल, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, आज एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, बहुत ही गजब की शख्सियत और म्यूजिक इंडस्ट्री की जान का जन्मदिन भी है। जी हाँ, एंड आप गेस कीजिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस लिंक। बट आप गेस कीजिए, क्योंकि उन्होंने रफी साहब के साथ सबसे ज्यादा ड्यूएट्स गाए हैं, क्या आप गेस कर सकते हो? जी हाँ, गेस कीजिए, क्योंकि अभी उन्हीं का जन्मदिन है आज। पिछले साल ही उनकी रुखसती जो है वो हुई है इस दुनिया से, एंड वी आर मिसिंग हर, वी मिस हर, बट या इट इज व्हाट इट इज, लाइफ यही है। सो यहाँ गेस कीजिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और लेजेंडरी सिंगर हैं वो। एक और हिंट इसी के साथ, रफी साहब का और लता जी का ये गाना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। जी हाँ, इसके बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि सच में हमारा दिल भी नहीं लगता रफी साहब आपके गानों के बिना। मतलब अगर आपके गाने नहीं होते तो हमारा दिल लगता कैसे? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। जी हाँ, मतलब आप सोचिए कि ये दुनिया विदाउट रफी साहब, लता जी, आशा जी और किशोर दा के गाने कितनी सुनी सुनी होती, राइट? मतलब वो एरा तो सुनी सुनी होती है, लेकिन आज भी हम इन गानों को सुनते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, अपने आप को अच्छा फील कराते हैं, अपने आप को एकदम यू नो खूबसूरत फील कराते हैं, क्योंकि अगर ये लिरिक्स हमें खूबसूरत फील नहीं कराएंगे तो कुछ भी नहीं करवा सकता। सो या, ये दिल हमारा नहीं लगता अगर इन लोगों की पहचान नहीं होती, इनकी गायकी नहीं होती। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और आप गेस कीजिए कि किसका है जन्मदिन आज। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना जो कि रिकमेंडेड सॉन्ग है, और इसका रिकमेंडेशन हमें प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही आ गया था, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट का, और गाने का नाम है जोगी ओ जोगी। क्योंकि ये गाना जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसका रिकमेंडेशन आया है हमारे बहुत ही बहुत ही बहुत ही जबरदस्त लिसनर, लिसनर कहना सिर्फ कमी होगी, कम बात होगी, जी हाँ, हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से ये फरमाइश आई है, रिकमेंडेशन आया है जोगी और जोगी, लता जी और किशोरदा का गाया हुआ ये गाना है। और थैंक यू सो मच सर इस रिकमेंडेशन के लिए। आई नो हम थोड़े लेट हैं इसे प्ले करने के लिए, बट हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम इसी सेगमेंट में इसे प्ले करें। थैंक यू सो मच, ऐसे ही रिकमेंड करते रहिए अच्छे अच्छे गाने, और आप लोग भी अपनी फरमाइशों के साथ आ जाइए। ये है गाना जोगी और जोगी आप सबके।

जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको गेस करने के लिए कहा था और गेस करने की कोशिश भी की है मेरे कुछ लिसनर्स ने, और कोशिश हुई है, एकदम कामयाब कोई नहीं हुआ। तो मैं ही आपको बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ आशा जी की। जी हाँ, आशा भोसले जी। जी हाँ, अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, इनकी आवाज, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, और जैसे गाने ये गा सकती थी वो मास्टर करना किसी और के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, आशा जी ने इनफैक्ट आर डी बर्मन को एक बार कहा भी था कि पंचम तुम मुझसे ऐसे गाने क्यों गवाते हो, लाइक वैसे वाले गाने, आ जा। जी हाँ, वैसे वाले गाने, मतलब कोई भी ऐसे गाने नहीं गा पाएगा, मास्टर करना तो दूर की बात है। तो उन्होंने कहा आर डी बर्मन से कि पंचम तुम मुझसे ही ऐसे गाने क्यों गवाते हो। तो पंचम दास सामने से कहते हैं कि अगर तुम ये गाने नहीं गाओगी ना तो मैं ये गाने बनाने ही बंद कर दूंगा, क्योंकि इसे और कोई गा ही नहीं सकता। दैट्स व्हाट पंचम दास सेड एंड आई थिंक इट्स फेयर। जी हाँ, सो आशा जी की जिंदगी जो है वो अगेन बहुत सारे उतार चढ़ाव वाली रही है। उनकी पर्सनल लाइफ में उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन प्रोफेशनली उन्होंने जो नाम कमाया वो लिटरली अमर रहने वाला है इस दुनिया के अंत तक। जी हाँ, यहाँ पर उनका एक गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और ये है जाइए आप कहाँ जाएंगे। आई डोंट नो, देर आर मेनी सॉन्ग जो कि आशा जी ने गाए हैं और वो आपको डिफरेंट डिफरेंट गाने पसंद होंगे, बट मुझे पता नहीं क्यों ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है, और मैंने सोचा कि एक गाना तो मेरी पसंद का भी बनता है, राइट? जी हाँ, तो सुनते हैं इसको और फिर मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक और फरमाइशी गीत।

जी हाँ दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि जब आशा जी ने इस गाने को गाया होगा ना, तो कॉन्फिडेंस जो कि इस गाने में आया है, वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि यू नो व्हाट, जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट के तो वापस इधर ही आना है, हमारे बिना आपका काम नहीं बनेगा। बिकॉज अगर आप सोचो तो आशा जी जो है वो कमांड करती थी बहुत ही जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी, और वो ऐसे गानों को भी गा सकती थी जिसे गाने की सोच कर ही लोग पीछे हट जाया करते थे। जी हाँ, लता जी ने तो सीधा सीधा ये कहा भी है अपने इंटरव्यूज में कि जैसे गाने आशा गाती है मैं कभी भी नहीं गा सकती। मैं सच में मानती हूँ कि आशा बहुत ही बखूब सिंगर है, बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, क्योंकि जैसे गाने वो गा सकती है वो मैं नहीं गा सकती। अगर आप मुझे गाने को दोगे भी तो भी मैं नहीं गा पाऊंगी, एंड दैट्स व्हाट लता जी सेड। और ये कितनी बड़ी बात है। जी ऑफकोर्स, वो उनकी बहन है तो वो इसलिए भी ज्यादा तारीफ कर रही थी, बट सिर्फ बहन वाला लॉजिक यहाँ नहीं है। आई मीन ये गाना गाना कि यू नो व्हाट, कुछ गानों के लिए तो आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे लगता है ये उनके दिमाग में चल रहा था जब उन्होंने ये गाना गाया, दैट्स वाई वो कॉन्फिडेंस उनकी आवाज में आ पाया और इस गाने में भी वो लहजा आ पाया। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, और जबरदस्त गपशप होगी, बातें होंगी, और तो और बहुत सारी जबरदस्त चीजें हम करने वाले हैं। सो हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं, एक फरमाइशी गीत जो कि आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। गाने का नाम है मुझे तेरी मोहब्बत का। जी हाँ, और ये गाना गाया है रफी साहब ने, लता जी ने, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत जबरदस्त फरमाइशों के लिए। ये रहा आपका गाना, अब आप सबसे मिलना होगा कल। बाय, सी यू, टाटा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेस फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। जी हाँ, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने अवैध पार्किंग को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कैमरा का नेटवर्क बढ़ा दिया है। इस साल अब तक 1.7 लाख से ज्यादा पार्किंग चालान काटे जा चुके हैं। वहीं नंबर प्लेट छिपाने वाले ड्राइवर्स पर पुलिस की चेतावनी। कैमरा चालान से बचने के लिए ब्रिस्बेन में कुछ लोग अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर तैलिए और कुर्सियां रखकर ढक रहे हैं। क्वींसलैंड पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि जानबूझकर नंबर प्लेट छिपाना बड़ा अपराध है। वहीं स्टॉकली में छोटा विमान हादसा। ब्रिस्बेन के दक्षिण इलाके स्टॉकली में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ, जहां टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एक छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान सवार व्यापारी इयान कैम्पबेल और उनकी बेटी हेना की जान चली गई। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और उड़ान सुरक्षा जांच। प्लेन हादसे के बाद ब्रिस्बेन के आर्चफील्ड एयरपोर्ट और आसपास के एविएशन रूट्स की सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने दुर्घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों से डैशकैम या वीडियो फुटेज शेयर करने की अपील की है। वहीं शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने की नई योजना। ब्रिस्बेन काउंसिल की ओर से न्यूस्टेड, साउथ ब्रिस्बेन और मिल्टन जैसे व्यस्त इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी के साथ क्वींसलैंड पुलिस का नया रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। बढ़ते चालान और हादसों को देखते हुए क्वींसलैंड पुलिस ने ब्रिस्बेन वासियों के लिए रोड सेफ्टी कैंपेन शुरू किया है। इसमें लोगों को सड़क किनारे गलत पार्किंग ना करने और गाड़ी चलाते समय सड़क के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली हॉस्टल हादसा और सख्त कार्रवाई। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के एक हॉस्टल में हुए अचानक हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड पर आ गया है। एमसीडी ने लापरवाही बरतने के आरोप में 5 सीनियर अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बड़ी नीलामी। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। आरबीआई ने मार्केट में पैसों के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए की दो बड़ी नीलामियां की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं संसद में महिलाओं की भागीदारी पर नया बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में महिला नेतृत्व को लेकर एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति और समाज में महिलाओं के लिए लीडरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं लग्जमबर्ग के डिप्टी पीएम का टैरिफ वॉर पर बयान। भारत दौरे पर आए लग्जमबर्ग के डिप्टी प्रधानमंत्री जेबियर बेटेल ने इंटरनेशनल ट्रेड और टैरिफ पर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया में टैरिफ वॉर किसी के फायदे में नहीं होती। वहीं उत्तराखंड में वोटर लिस्ट चेकिंग अभियान। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के चार प्रमुख जिलों में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की अर्जियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं इसरो चीफ का प्राइवेट स्पेस सेक्टर पर संदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा कि इसरो का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जा रहा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले इंटरनेशनल लिटरेसी डे आज यानी 8 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। वहीं मेक्सिको में यूनेस्को का बड़ा सम्मेलन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौके पर मेक्सिको के शियापास शहर में 2 दिनों का ग्लोबल इवेंट शुरू हो चुका है। इसी के साथ ईरान में पेट्रोल डीजल के दामों पर फैसला। मिडल ईस्ट से आई खबर के मुताबिक ईरान सरकार ने अपने देश के सबसे ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं दुनिया भर में साक्षरता के आंकड़े। साक्षरता दिवस लिटरेसी डे पर जारी नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 दशकों में दुनिया की 88% आबादी पढ़ना लिखना सीख चुकी है। वहीं नेपाल बाढ़ और राहत कार्य। पड़ोसी देश नेपाल में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय मदद एजेंसियां जमीन पर उतर चुकी हैं। वहीं ब्रिक्स देशों की तकनीकी और व्यापार बैठक। ब्रिक्स देशों की एक अहम बैठक आयोजित हो गई है जिसमें चीन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट और इन्वेस्टमेंट पर लगे प्रतिबंधों को हटाना या आसान बनाने पर चर्चा हुई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले यूएस ओपन में येलेना ओंटसेंको का विवाद। टेनिस कोर्ट से बड़ी खबर है। यूएस ओपन के एक मुकाबले में लात्विया के स्टार खिलाड़ी येलेना ओंटसेंको और विरोधी टीम के कोच के बीच तीखी बहस हो गई। वहीं चेस में मैग्नस कार्लसन और सिंदारोव का मुकाबला। शतरंज की दुनिया से दिलचस्प खबर। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को ड्रॉ पर रोककर सभी को हैरान कर दिया है। इसी के साथ यूएस ओपन से 7 टॉप 10 खिलाड़ियों की छुट्टी। यूएस ओपन 2026 में लगातार बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। नेवाक जोकोविच ने लेकर से लेकर टेलर फ्रिट्स तक मेंस सिंगल्स के टॉप 10 में से 7 बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: Me.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चिल
3: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा या
2: या
3: Okay, soft.
2: Yeah, soft.
3: Yeah.
2: Up loud. Yeah.

0: दिल। हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट,
3: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय
4: ब्रिस्बेन। क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, LG वॉइस और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488-623-459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409-390-583 या फिर बाबा ऑन 0413-701-651।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

ना बदला में ना बदला।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सासों की माला पे सिमरू मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
2: तो उमसॉक से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801
3: प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई
4: ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सर्जन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक From 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी

0: कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो सैफ अली खान ते शान लगभग दो दहाके बाद ना फिल्म हैवान दे नाल एक बार फिर तो इकट्ठे नजर आए है। जुगलबंदी बहुत शानदार है, एक शानदार एक्टर ते एक शानदार सिंगर है। फिल्म दा पहला गीत है जिहड़ा मेरे हीरो है वो हाल ही विच रिलीज होया ते इसने फैंस नूं एक बार फिर तो इस जोड़ी दी शानदार संगीतात्मक जुगलबंदी दा तोहफा दित्ता है। गाने तो पहला ही खूब गाने नूं प्यार मिल रहा है ये फिल्म रिलीज होने तो पहला ही तो मैं सोचा कि क्यों ना और मौका यहो जहा है तो नजर पाइए जब सैफ ते शान ने म्यूजिकल चार्टर्स विच अपना जलवा बिखेरिया कट्ठे कट्ठे आए सी करिए ना उन्होंने गल तो कर दिया पर पहला सुनो एक गीत

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: मुंडा साधुवाला।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.9 ते 4-6 संदेश अलग दे नाल सिबणे होए। इस तो बाद जेड़ा आंदा हैगा है गीत बारे ने, पहला फिल्म बारे दस दिया। तो फिल्म है जी हम तुम बहुत सोहनी फिल्म हैगी है। हुण तुसी जे सर्च करोगे गूगल ते तो तुहानू पूरा डाटा मिल जाना हैगा है हम तुम दा। मैं नहीं दस दिया, तुसी एक बार सर्च करो तो फिर मैनू मैसेज करो। तो इसका गाना है लड़की क्यों, सैफ अली खान दे सहज ते बेफिक्र अंदाज वाले करण नूं इस गाने विच शान दी मधुर ते दिलकश आवाज दा बेहतरीन साथ मिलिया सी। रानी मुखर्जी दे नाल सैफ दी चुलबुली केमिस्ट्री ते गाने दे गलबात वर्गे बोल ने लड़की क्यों नूं सैफ अते शान दी सब तो यादगार कोलैबोरेशन्स दे विचों इक बना दिता सी।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
1: ਹਨੀ, ਇਹ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 FM ते जी आज संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। गल्लां दा सिलसिला साडा जारी हैगा, नालों नाल असीं गीत भी सुन रहे हैगे आ, थोड़ी पसंद है कुछ मेरी पसंद है। हुण खैर फिलहाल असीं सैफ अली खान ते शान दी जुगलबंदी दी गल कर रहे हैगे आ, तां अगली जिहड़ी फिल्म इन्हां दी इकट्ठियां दी आउंदी हैगी आ, फिल्म नहीं गीत, पूरे गाने तां नहीं एक एक गीत, ओह फिल्म दे विच्चों आउंदा है, ओह है जी फिल्म तारा रारा राम पम। हां जी, इस फिल्म दे विच्चों ते गाना है हे शोना। हे शोना विच ना सैफ अली खान ने अपने ट्रेडमार्क रोमांटिक अंदाज दा जादू बिखेरिया, उहदे शान दी गर्म जोशी भरी आवाज ने उन्हां दी परफॉर्मेंस नूं होर निखार रहा है। विशाल शेखर दे कंपोजिशन वाला एक गाना सैफ दे किरदार दे रोमांस नूं लैके परिवारिक जीवन तक दे सफर नूं खूबसूरती नाल दर्शाउंदा है, ते तारा रम पम दे सब तो खास गाने विच शामिल करदा है।

हाँ जी जी आया नु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरी स्टेशन रेडियो पर सोनी वन सन वन एम ते चार छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। अगला जेड़ा गाना हैगा वो है जी मेरे हीरो है वो, जिसकी स्टार्टिंग दे विच गल की थी फिल्म है जी हैवान। जी हाँ, हे शोना दे लगभग 19 साल बाद सैफ अली खान ते शान एक बार फिर हैवान दे गाने मेरे हीरो है वो दे नाल इकट्ठे आए ने। ਇਹ ਮਧੁਰ ਗਾਣਾ ਸੈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

0: हूँ, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत-बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने होए। देखो इन्नियां सारियां चीजें बारे में थोन दसता हैगा, इन्ने सारे गीतां बारे में थोन दस दित्ता हैगा, ये जेड़े सैफ अते शान दे इकट्ठे आए ते बहुत ज्यादा पसंद किए गए दर्शकों वालों। जिवें सब तो पहला दिल चाहता है तो वो लड़की है कहां, फिर हम तुम तो लड़की क्यों, फिर सलाम नमस्ते तो माए दिल गुज, ते फिर हे शोना फिल्म हैगी है तारारम पम, ते फिर उस तो बाद आंदा है जी मेरे हीरो है वो हैवान फिल्म। तो हुण तुसी इह दसो कि इस दे विचों केड़ा गीत तुहानू बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुसी चाहुंदे है क्यों कि होर इन्हां दी दोनां दी जुगलबंदी इकट्ठी देखण मिले, तां कमेंट करो, मैसेज करो, मेल करो, जो भी करो पर जुड़ो साडे नाल।

0: दूरदर्शन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
6: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shahrukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं Radio Biswani.
8: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413 701-651.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ऋग्वेद, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सरगम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक From 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा ओके
3: सॉफ्ट लाउड
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
5: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
4: ऐसा क्या खास है वहाँ
5: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
4: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन. जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ. असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे. होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो. ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन. वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है. इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है. असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां. असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां. इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी वॉइस और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
8: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

என்ன நார் அவுட் பாக்குறீங்களா? சே அடே. ஐயோ ஜானி.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Subah se shaam tak.
2: When I will dance, my dance shall speak for me.
1: शाम से रात्रि तक
3: सुपर सुपर फैबुलस आउटस्टैंडिंग
4: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
4: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा या
3: या
4: ओके सॉफ्ट
3: सॉफ्ट या अब लाउड या

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्रीकेसीज को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य, आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, क्या हाल है मेरी ब्रिस्बेन फैमिली का? नई सुबह है, नई एनर्जी है और एक और ब्यूटीफुल डे है। चाहे आज का दिन कितना भी बिजी हो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आपका मूड आपके दिन की डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो स्माइल कीजिए, अपनी फेवरेट चाय या फिर कॉफी जरूर उठाइए और वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड कर दीजिए, क्योंकि आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन में प्रोग्राम जानने का सफर, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन के साथ। और आप सभी से माफी चाहती हूँ मेरी आवाज के लिए, क्योंकि आज तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। कुछ दिनों से वायरल हो चुका है, उस वजह से आवाज बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। फिर भी कोशिश रहेगी कि आपके पास पूरी अपडेट जो है पूरी पहुंचे, ब्रिस्बेन के वेदर, ब्रिस्बेन से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके क्वींसलैंड की सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में। आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रसवानी में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन के वेदर की। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को ब्रिस्बेन में वेदर जो है मोस्टली सनी और पार्टली क्लाउडी रहने का फोरकास्ट है। टेम्परेचर अराउंड 12 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सुबह वेस्ट साइड में हल्का सा फॉग पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल डे काफी प्लेजेंट रहने वाला है। और हाँ, यूवी इंडेक्स 7 हाई फोरकास्ट किया गया है, तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जानेंगे थोड़ी देर बाद ब्रिस्बेन के न्यूज अपडेट। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

अब चलिए सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया और ब्रिस्बेन की कुछ इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूजर्स के लिए प्रपोज्ड न्यू रूल्स। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रपोज किया है जिसमें कि सोशल मीडिया यूजर्स को पर्सनलाइज्ड एल्गोरिथमिक फीड और सिर्फ उन लोगों और उन क्रिएटर्स की पोस्ट देखने के बीच च्वाइस देने का आइडिया है जिन्हें वो फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इसका एम यूजर्स को अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस पर ज्यादा कंट्रोल देना है। जानेंगे थोड़ी देर बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग की एक अपडेट। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन।

आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक और अपडेट जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूमर सेंटीमेंट सितंबर में नोटिसबली गिरा है। वेस्टपैक मेलबर्न इंस्टीट्यूट सर्वे के अकॉर्डिंग सेंटीमेंट इंडेक्स 5.2% गिरकर 84.4 हो गया है। इंटरेस्ट रेट्स और पेट्रोल प्राइसेस को लेकर हाउस होल्ड्स में कंसर्न बना हुआ है। वहीं पर क्वींसलैंड वेदर और बुश फायर कंसर्न की बात करें तो रिसेंट डेज में क्वींसलैंड के कुछ एरियाज में टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ऊपर रहे हैं। ब्रिस्बेन ने संडे को 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो कि सितंबर का सिटी में 2019 के बाद सबसे हॉट डे था। क्वींसलैंड के कुछ एरियाज में बुशफायर एक्टिविटी भी कंसर्न बनी हुई है, इसीलिए फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट रहना इम्पोर्टेंट है। जानेंगे थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स अपडेट, आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो।

स्पोर्ट्स की दुनिया से भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूव कर दिया है। बीबीएल के फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट को

बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी चाहती हूँ। होप सो आप सभी मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। बिल्कुल साथ नहीं दे रही आवाज़ आज। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो चलिए अब थोड़ा सा मूड हल्का करते हैं। टाइम फॉर सम एंटरटेनमेंट। काइली मिनोग एक बार फिर से हेडलाइंस में है। आपको बता दें कि पॉप आइकन ने यूरोपियन वेकेशन के दौरान अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस का अटेंशन जो है अट्रैक्ट किया है। काइली अब अपने अपकमिंग कमिटमेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया रिटर्न करने की प्रिपरेशन में है और ऑस्ट्रेलियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में द ब्लॉक 2026 भी हेडलाइंस में है, जहां पर प्रोडक्शन और कंटेस्टेंट्स जो है उसको लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में सुब्रिस्वानी फैमिली। आज के लिए इतना ही। याद रखिए, आपकी स्माइल फ्री है लेकिन किसी के दिन को प्राइसलेस बना सकती है। पॉजिटिव रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि वायरल बहुत हो रहा है। आप भी बचे रहें, अपनी हेल्थ का सख्त से सख्त ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर। मिलते हैं फिर एक फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश स्टोरीज और फ्रेश एनर्जी के साथ। अंटिल देन कीप स्माइलिंग ब्रिस्बन, कीप शाइनिंग एंड हैव अ ब्यूटीफुल वेडनेसडे। टेक केयर, बाय बाय।

0: foreman's cottage, which is great to walk around and have a look.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिज फानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जब सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर आए एक साथ कई रोबोट्स। पोलैंड की राजधानी वारसा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां करीब 30 रोबोट्स सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये रोबोट्स मानव जैसी आकृति वाले और कुत्तों जैसे चार पैर वाले थे। इन रोबोट्स ने डिजिटल मामलों के मंत्रालय के सामने झंडे लहराए, नारे लगाए। ये प्रदर्शन डेमोक्रेटिज्म ने आयोजन किया था। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटाइजेशन का श्रम बाजार पर पड़ने वाले असर पर ध्यान दिलाना था। सऊदी अरब के एयरपोर्ट और अरामको ऑयल साइट्स पर हूती विद्रोहियों का हमला, 73 लोग घायल। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई नागरिकों और आर्थिक ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में कम 73 लोग घायल हो गए हैं। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उनके दक्षिणी हिस्से में मौजूद कई ऊर्जा और तेल कारखानों को निशाना बनाया गया है। फ्रांस के रेनॉयर म्यूजियम में हुई चोरी, 98 करोड़ की कीमत वाली चार बेशकीमती पेंटिंग्स लेकर उड़े चोर। फ्रांस के मशहूर रेनॉयर म्यूजियम में दो चोरों ने सेंध मारी कर लगभग 98 करोड़ रुपए की चार बेशकीमती पेंटिंग्स चुरा ली। इस चोरी ने फ्रांस के म्यूजियम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। NIA ने अमेरिकी और 6 यूक्रेनियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इनमें अमेरिकी नागरिक और भाड़े के सैनिक मैथ्यू एरन वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। इन सभी पर म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों से संबंध रखने और भारत विरोधी ताकतों को सैन्य व ड्रोन ट्रेनिंग देने की साजिश का आरोप है। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले पकड़े गए 3 संदिग्ध, पीएमओ की फर्जी आईडी और बंदूक बरामद। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले पुलिस ने BKC स्थित नीता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेंटर से पहले 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पकड़े गए संदिग्धों के पास पीएमओ का फर्जी आईडी कार्ड और एक बंदूक बरामद की गई है। पकड़ा गया एक 24 वर्षीय युवक खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बंदूक के साथ हिरासत में लिया गया संदिग्ध बॉडीगार्ड के रूप में युवक के साथ था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिज फानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह अस्सलामा अस्सलामुअलैकुम अजी क्या कहने सुभान अल्लाह गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह अस्सलामा अस्सलामुअलैकुम अजी क्या कहने सुभान

ओ बाते न बना आंखें न चुरा सदक जाऊं मैं बल्ला कुत्ते में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम अजी क्या कहने सुभान।

0: तुमको मुझसे प्यार है।
1: ओके, सोच समझ कर हाँ बोले।
2: Otherwise you'll end up.
1: बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ओके, नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू चेंज द प्लेलिस्ट, बट वेंसडे इज वेंसडे।
2: वेंसडे इज वेंसडे। ओह सॉरी, व्हाई? व्हाट डू यू मीन वेंसडे इज वेंसडे? नो,
1: आवर मूड।
2: आवर मूड।
1: ओके, सो what was this, what I was going to say? Somebody sent me something here. Okay, that I got. Thank you very much. Okay, kuch aur bhi ideas aa rahe hain.
2: Kaun si?
1: Okay.
2: Ideas?
1: Dispute. Okay, aage badhte hain dosto. No, we won't say that. All right. Yaad rahe dosto. Haan, Shobha. चलो याद दिलाता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, डू लिसन टू ए प्रोग्राम, फिर 11 बजे से संदेश के साथ, और 3 बजे से आई हैड ऑल 3 प्रोग्राम्स यस्टरडे, आई इवन हैड फुल नीबियस प्रोग्राम।
2: ओके,
1: या आई वाज डूइंग समथिंग सो इट वाज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। ये एनीवे, चलो सुनते हैं अगला गीत दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान।

सोच समझ के। बहुत प्यारा गाना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच अमिता फॉर प्लेइंग दैट सॉन्ग। और चलो एक और रिक्वेस्ट है, बजा देता हूँ और सुनते हैं।

0: jihad wasto ala bela sawan ayure hum dil de chuke sanam ka gana aur ismail darbar ka jo film hota hai always very nice salman khan aur aishwarya rai the in is movie mein okay is mein 27 minute ho gaye 8 bajkar aur aage badhte hain and
1: maybe we should go to the marketplace for a short while play some ads. Where are you looking at me?
0: Marketplace. Yeah, okay. Okay.
1: Are you so blank?
0: Man, you're getting very
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi guys, I'm Madhmeet from the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi, this is Salman Khan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
12: प्रिया नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का
12: अच्छा वो क्या अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा
12: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें
14: सांसों की माला पे सिमरूं मैं
15: ब्रिस्बेन क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए म्यूजिक डिवोशन पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड शैंडलर सबसे खास बात ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं एक मीनिंगफुल कॉज भी है ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट निखार जुनेजा अ जर्नी विद इन एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम
16: उसी आराम की गली में तुम जाना मिलेंगे हनुमाना
15: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co स्पॉन्सरशिप्स पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009 प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स कम फॉर द म्यूजिक स्टे फॉर द पर्पस लीव इंस्पायर्ड
0: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को फोन 3630 5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
17: Sargam Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmud Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

0: अभी आपने सुना दोस्तों, बहुत ही प्यार से भरा प्यारा गीत। फिर आगे ओके बजाओ।
1: व्हाट
0: छोटी हो गया है।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: और दोस्तों अब यहाँ से जाने का वक्त हुआ है दोस्तों, कल मिलेंगे हम सुबह.
1: yep.
0: आपने साथ दिया, थैंक यू सो मच. और इसी गीत के साथ हम निकलते हैं. नमस्कार,
1: नमस्ते, हैव अ ब्यूटीफुल डे.

सुप्रभात और आप सबको सताक्षी की राम राम। इस वक्त सताक्षी को आप सुन रहे हैं ब्रिस्बेन से। जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी पर मैं सताक्षी हूँ आज आपके साथ। और ब्रिस्वानी की सुबह तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत है, आपकी कैसी है भाई? शेयर कीजिए, हम जानते हैं कि आप ग्लोबली इस वक्त हमें सुन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रिस्बेन के लिसनर्स तो जुड़े ही हैं, लेकिन ग्लोबली जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट्स पर कि कैसी है आपकी सुबह, ठंडी या फिर हमारे देश की तरह गर्म गर्म, शेयर कीजिए। और हाँ, 2 घंटे जो है वो इट हैपेंस का ये सफर है, और इट हैपेंस के सफर में सताक्षी का आपके साथ साथ बने रहने वाला है। हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, अपनी मॉर्निंग को एनर्जी से भरेंगे और एंजॉय करेंगे बहुत ही खूबसूरत से मॉर्निंग ट्रैक्स भी। तो सुबह का आज का जो एक सिंपल सा मैसेज जिसके साथ में करूंगी सफर की शुरुआत, वो है कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, पर एक चीज जो खास होती है वो ये कि हर सुबह हम सब के लिए नई जरूर होती है। तो चलिए एक बढ़िया से एहसास के साथ शुरू करते हैं आज का इट हैपेंस। रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर आपकी हम सफर सताक्षी के साथ। और क्योंकि मॉर्निंग शो है हमारा, तो ये अगला ट्रैक भी, अगला ये मॉर्निंग ट्रैक भी आपके लिए है।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर दोस्तों आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो जिसे इस वक्त आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सो जिन्होंने अभी में ज्वाइन किया है उन सबको ये सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मुबारक आज का दिन उन्हें भी जिनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है, यानी जिनका आज है हैप्पी बर्थडे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और बस सताक्षी की विश आपके लिए यही है कि आप खुश रहें, जबरदस्त रहें, मस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। आपको सबकी खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले और आपका हर दिन शुभ हो। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी उन सबको शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आप सबके लिए बहुत ही खास और स्पेशल हो। और ये जो दिन है ये आपकी जिंदगी में प्यार का, मोहब्बत का, चाहत का दिन बनकर आए और हर साल ये एहसास जो है वो और भी बढ़ता चला जाए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, इसे सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: पर जहां जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा।

कई बार जब आप सुबह उठते हैं इस वाइब के साथ उठते हैं, इस एहसास के साथ उठते हैं कि आज बहुत सारे काम है, और वो बहुत सारे कामों का एहसास आपके जहन में आते ही आपका दिन आप ही को बोझ लगने लगता है। लेकिन याद रखिए कि हर एक दिन जो है आपकी जिंदगी का, कोई भी दिन हो, वो कभी भी आपके लिए बोझ नहीं होता दोस्तों, वो आपके लिए हमेशा एक ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग कि आप आज भी एक नई सुबह में सांस ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स की आज भी आप अपने के बीच हैं, ब्लेसिंग की आज भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो बीता दिन कैसा भी गुजरा हो, आपकी जिंदगी में कितने भी टफ टाइम से आप गुजर रहे हो, बट स्टिल अगर आपकी जिंदगी में एक नया दिन है तो उससे शुभ, उससे बेहतरीन चीज जो है वो आपकी लाइफ की और कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ की सबसे कीमती चीज जो है वो हमारी सांसें हैं। तो आपको अगर आपकी वो लाइफ की सबसे कीमती चीज आज एक बार फिर से मिल गई है तो डेफिनेटली आप बहुत लकी हुए ना। हाँ, इसीलिए चलिए आइए इंजॉय कीजिए मेरे साथ अभी खुद की किस्मत के नाम, खुद के बेहतरीन टाइम के नाम ये अगला ट्रैक, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 107.01 एम पर।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर और इट हैपेंस में आपका साथ दे रही है आपकी सताक्षी। सबको अप्रिशिएट करना हमें ध्यान रहता है, हमें याद रहता है। किसी ने कुछ अच्छा कर दिया घर में तो हम उसे कहना नहीं बोलते कि भाई ये बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, लेकिन जिसे अप्रिशिएट हमें सबसे ज्यादा करना है एक्चुअली हम उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी, हम अपने आप को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। जबकि छोटी छोटी सी चीज़ें लाइफ की जो है ना, उसमें खुद को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा ही खास होता है। जैसे अगर आप सुबह उठ गए, टाइम पर उठ गए, बिना अलार्म के अगर आप उठ गए तो आपने गजब ही कर दिया बॉस, और इसके लिए एक अप्रिशिएशन तो बनता है। अगर आज आपने एक्सरसाइज की है, अप्रिशिएशन बनता है। अगर आप जो आपने अपनी डाइट का ध्यान रखा है, अप्रिशिएशन बनता है। अगर आपने किसी की हेल्प की है, अप्रिशिएशन बनता है। बॉस अगर ब्रेकफास्ट टाइम पर किया है या बनाकर सबके लिए रेडी कर दिया है तो खुद की पीठ थपथपाइए, खुद के कंधे थपथपाइए और कहिए कि आप बेस्ट हैं। लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को अप्रिशिएट करने से आता है जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दुनिया के साथ साथ खुद को भी अप्रिशिएट करते रहिए, और चलिए आप हमें अप्रिशिएट करें, इसके लिए हम प्ले करते हैं आपके लिए अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
3: वेलकम बैक, रेडियो प्रिस्मानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ हैं आप और ये वक्त है गानों की आज की हैट्रिक का। तो कौन से गाने हैं आज जो तीन हम आपके लिए चुनकर लाए हैं, आइए सुनवाते हैं आपको और एंजॉय करते हैं अभी ये पहला ट्रैक।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: भाई मम्मी पापा

0: की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

देखिए, चीजें बिगड़ती धीरे धीरे हैं, हम ध्यान ना दें लेकिन बिगड़ती धीरे धीरे हैं, वो बात अलग है। जब कोई भी बात बहुत बिगड़ जाती है तब उस पर ध्यान जाता है। जैसे कि जब दो लोग साथ होते हैं तो छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उनके दिलों को दूर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वक्त उन पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान उस पर तब जाता है जब हम एक दूसरे से कह देते हैं, अब हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब हमें लगता है, यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन शुरुआत कहीं से तो हुई है ना, है ना। और अगर हम उस बात को वहीं संभाल लें तो कितना अच्छा हो। तो बहुत जरूरी है जब चीजों की शुरुआत होती है तब उसको रियलाइज किया जाए। एक आर्ग्यूमेंट जब हुआ है आपके बीच में और वो खत्म नहीं हुआ है ना, कई बार हम बात को खत्म करते हैं और कई बार हम खत्म नहीं करते, हम उठ करके चले जाते हैं या फिर हम एक दूसरे से कुछ दिन बात नहीं करते हैं उस टॉपिक पे। वो बात जब तक खत्म नहीं हुई है इसका मतलब वो बात जो है वो दिल में घर कर गई है, और उसी से दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसे करके रिश्तों में एक दूरी आनी शुरू हो जाती है। और वो दूरी भी जो है वो आपको ये एहसास कराती है कि ये जो रिश्ता है ये एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ये बहुत टाइम से जो है वो जो दिल में भरा हुआ था ना उसके जरिए धीरे धीरे यहाँ तक आया है। तो लाइफ में छोटी छोटी बातों को सॉर्ट आउट करना, लाइफ में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, खासकर तब जब बात रिश्तों की हो। जरा सोचिए मेरी बात को, बहुत ही गहरी बात है और आप शायद खुद से रिलेट कर पाए। एक और ट्रैक आपके लिए, एंजॉय कीजिए इसे भी और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी 1701।

जी हाँ, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर और आपके साथ है आपकी हम सफर सताक्षी इट हैपेंस के इस एक और खास और बेहतरीन सफर में। दोस्तों हम क्या सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ में सब कुछ एक दिन में परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा, या सारी ये जो सक्सेस है वो जब हमारा सही टाइम आएगा तो एक दिन में हमें मिल जाएगी। देखिए, रातों रात कुछ होता नहीं है, है ना। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए एक एक स्टेप उठाना पड़ता है और धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन होती जाती हैं। एक दिन में, एक रात में जिंदगी कभी नहीं बदलती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप झट से चीजों को सेटल डाउन कर देंगे या आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन मैजिकल वे में होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे से स्टेप्स लीजिए और अपनी सक्सेस की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ अभी रेडियो ब्रिस्वानी पर और एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस। मिलते हैं इस अगले ट्रैक के उस पार। के प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी।